0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Misabakanyamu.
1: Si prebari yau aku ayang usio.
0: Yau angusio tungira prololadara.
1: Besi sahari kholi ba radio morning do kyaale. Yo basari katte chhava kwe khaymu khoyinting usio.
0: E thabi sanar tisa gari baloti ra radio morning dinge na ong usio.
2: क्यों यूँ है आपके रेडियो मर्सांगी एफएम 95 मेगाहर्ट्ज़

0: Extreme energy drink.
1: Extreme energy drink.
2: Time check. Ahile thik 3 baje ko cha.
3: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
4: मर्संग देपिम 95 मेगाहर्ज
5: किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
6: राष्ट्र को शान किसान
5: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी सहर, सम्पर्क 97497 38 798।
1: वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। संयुक्त भूपुर सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 13 औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। भोटेउडार सेवा केन्द्र असोज 10 गते शनिबार सृजनशील तमु समाज भवन सुन्दर बजार 9 लमजुङ बिहान 11 बजे। प्रधान कार्यालय बेसी सहर असोज 17 गते शनिबार शान्ति टोल तमु समाज भवन बेसी सहर 7 लमजुङ बिहान 11 बजे। साधारण सभामा उपस्थित हुँदा सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरूले आफ्नो बचत पासबुक अनिवार्य ल्याउनु पर्नेछ। सुबेदार कृष्ण बहादुर घले सचिव एवं संयुक्त भूपू सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सिंग एफएम 95 मेगाहर्ज
4: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
5: राष्ट्रको शान किसान
4: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युशन्स

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी